0: और मैं पाचू
1: ईटी यूनियो और रेडियो पियम चुन के वो एल क्वारो
0: पियम चुन के वो एल क्वारो
1: बीमार मैं पाचू
0: बीमार मैं पाचू
2: यू आर लव यू बी डू टेल आई

0: और मैं पाचू
1: ईटी यूनियो और रेडियो
2: Yo Ricky, turn me up a little bit. Yo Ricky, turn me up a little bit.

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: डन मिलिंस एंटरटेनमेंट स्मार्ट फिनर मम्मीज बॉय ट्रैड निगर ची या
3: रोजी द बीट किला
2: ए बापटिन फॉर रॉय अमीना बापटिन फॉर रॉय अमीना Bob Chin, poor road for his love and grace upon your life, boy, holla. Let me

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो